0: देने
1: समोसा हाउस इंडियन कुजीन ब्रेकफास्ट विच गर्मा गर्म परौठे लंच एंड डिनर विच पूरियां छोले भटूरे फिश टिक्का चाइनीज इंडियन फूड हर प्रकार दी मिठाइयां अते केटरिंग भी कर देने इंडियन कॉफी अते कुल्लर स्पेशल चा भी इना कोलो मिलदी है हर प्रकार दे खाने वाली शानदार रेस्टोरेंट समोसा हाउस इंडियन कुजीन एंड स्वीट्स ओपन 24 आवर्स यूनिट 2154-4310-104 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी
2: 4030461-6161
3: ग्रोसरी खरीदने लई हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर
4: ताजियां सब्जियां फल फ्रूट दालां मसाले ते बर्तना तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा कीमतां कट ते क्वालिटी A1
3: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर
4: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां हफ्ते दे 7 दिन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक
3: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर पहली लोकेशन 331-3690 वेस्टमिंस ड्राइव
4: दूजी लोकेशन 117-7780 एवेन्यू
3: तीजी लोकेशन 570-6520 फाल्कन रिज बुलेवार्ड
4: चौथी लोकेशन 606 सिटीस्केप स्क्वायर
3: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे
4: छठी लोकेशन 445 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी
3: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दिया 6 लोकेशनां दा सांझा फोन नंबर
4: 403-835-2222 नॉर्थ ईस्ट कैलगरी दे कैसल रिज एरिया दे विच है लॉट खरीदन दा शानदार मौका जिथे बनाए जा सकदे ने 3 टाउन हाउस एना ही नहीं एना तिना दे नाल लीगल बेसमेंट स्वीट भी बनाईया जा सकदियां ने बिल्डर्स ते इन्वेस्टर्स लई है शानदार मौका फ्यूचर रेंटल इनकम लई है ए एक बहुत वधिया ऑप्शन वधेरे जानकारी लई कॉल कर सकदे हो एमे नु 403-617-2111 ते अमन गिल नु भी कॉल कर सकदे हो 403-479-7007 ते बिल्डिंग परमिट पहला तो ही अप्रूव्ड है
3: रेडियो सरसंगम 94.7 FM सुन रहे सारे श्रोतियां नूं कुलदीप सिंह वल्लों सति श्री अकाल अज दिन सोमवार मई महीने की 4 तरीक सन 2026 हुण तो लैके 6 बजे तक मेरा ते आप जी का साथ रहेगा अज दे इस प्रोग्राम विच असी बहुत सारियां खबरां ते चर्चा करनी है ते प्रोग्राम दे दूसरे हिस्से विच एक महराना राय गलबात वह भी पेश करा इस तो बाद 8 बजे अमृत बराड़ जी प्रोग्राम लैके हाजिर हो 9 बजे पंजाब तो जितेंद्र पन्नू जी नाल असी गलबात करा ये साढ़े अज के बाकी रेंदे प्रोग्राम से उन्हों का वेरवा अज के इन्होंने प्रोग्रामा दे विच जिहड़ियां खबरां ते असी चर्चा करनी है उन्होंने भी झात मारते हैं लेकिन थोड़ी जी पहला मौसम की गल कर लीए कैलगरी दे विच पिछला हफ्ता काफ़ी खुशगवार वधिया गुजरिया इस वेले भी 12 डिग्री सैलसीयस के आस पास टैंपरेचर है जी जे आने वाले दिनों दे विच असी गल करिए तां इस तरह कलू भी रहने की संभावना है उस तो अगले दिन 22 डिग्री सैलसीयस वीरवार को 20 डिग्री शुक्रवार को 17 डिग्री तो सनिचरवार को 16 डिग्री सैलसीयस से हल्की फुल्की बारिश भी हो सकती है सवेरे मई 9 को बारिश होने की संभावना है जिस दिन कैलगरी दे विच नगर कीर्तन सजाए जाने ने अजे तक जो अनुमान है फिर मौसम वैसे इत्थे की प्लस दे विच 15 तो उपर उपर टैंपरेचर रहने की दिन वेले का तापमान इत्थे रहने की संभावना है